जाको ठाकुर ऊंचा होई सोजन पर गर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर सदा संग नाही प्रभ दूर। कवला चरण शरण है जाके कह जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता। कैसे

आसा वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है आखो श्री वाहिगुरु। आसा वाले जीवन विच आस है ना, इंतजार है ना, ए विच बड़ा सुख है, ए विच कोई अगम्मी रस है। साईं दी याद विच, मालिक दी याद विच यादा भी पूरियां हो जांदियां, पर प्यारी सत्संगत याद विच भी रहना ए भी अवस्था है। मालिक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना, हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल बन गया। इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे। प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण। आखो श्री वाहिगुरु।

जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्हों ने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

निर्मल है। ये सब तो निर्मलता है। जिस वेले तू हरि दा नाम जपेगा तेरा मन निर्मल होगा, मन निर्मल होएगा फिर तेरे कर्म भी निर्मल होंगे। निर्मल कर्म करने वाला सदा सुखी है, पाप करने वाला दुखी है। पापी कर्म कमांदे कर दे आए, इस वास्ते सिमरन कर। जी मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। बाबा जी वचन करते सन मन ना लगता।

मांगो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

जितने भी इसके छिद्र हन, छेक हन, होल्स हन शरीर दे, उना दे विच्चों अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है। कन चो, अखियां चो, नासकां चो, मुंह चो की निकल रहा है, अपवित्रता निकलती है, गंदगी निकलती है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध इसने सिर्फ अपने अंदर उस अकाल पुरख वाहिगुरु नु प्रगट करके ही होना सी, उस तो बिना यह शुद्ध नहीं है। सुची काया हर गुण गाया, हरि दे गुण गाउन नाल ही यह काया सुची हो सकती है, वरना यह सुची नहीं हो सकती। कहंदे ए ना पाक है, किथे मंदिर, किथे इसनु मंदिर वर्गी बना देना सी, ते किथे इसनु नापाक आख्या है, अपवित्र है। तीसरा नुक्ता, गुरु साहब आखते हैं यह डरावनी है, यह काया कहंदे

अगर इसनों मंदिर नहीं बनाया तो जदों इस दे विच्चों रूह निकल जाएगी कहिंदे यही दुर्लभ डरौनी लगेगी, इसके नजदीक खड़ना मुश्किल हो जाएगा, खड़दियां डर लगेगा, यह डरौनी बन जाएगी। फिर आखदे हन

अगर इस काया दे अंदर ए पोटेंशियल है कि ए काया नू बनाउन वाले नू ए बुझ सकती है, रियलाइज कर सकती है, उस दे विच इमर्ज कर सकती है, उसनू समझ सकती है, तो कहंदे अगर उसनू नहीं है समझदी तो ए पशु तो प्रेत तो मुगत तो भी बुरी है, प्रेत तो भी बुरी है, पशु तो भी बुरी है। चौथा नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन एक काया कमली है, मूर्ख है, कहंदे हन

0: फिर आखते हम ये मूर्ख है,
1: आसा बंदी मूर्ख दे
0: आसा बंदी आशामा बनी फिरती है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है, हाले में आ करना है। इस मूर्ख नु ये भी नहीं पता कि हो सकता कल दा दिन तेरा अखीरला दिन होवे, कल दी रात तेरी आखिरी रात होवे, अखीरला श्वास तेरा नेक्स्ट ही होवे, हो सकता आ साल तेरा अखीरला साल होवे। पर ए आशामा बंदी है बड़िया लंबिया लंबिया, कई बंदे कितनी उन्हां दी उम्र हो जाएगी फिर भी आखणगे हाले असी जदों सैटल हो गए तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सैटल पता नहीं कदों होणगे, हो सो कई लोग सारी उम्र सैटल ही नहीं होंगे, देन दे फाइनली सैटल इन द ग्रेव, फिर वो सैटल हो जाए। गुरु महाराज जी आखते हैं ये मूर्ख है क्योंकि इसने अपनी गलत आदतां बना लिया हैं, एडिक्शंस बना लिया हैं, सुभा बना ले हैं, अते उना चीजा नू वर्तदी है जड़िया चीजा इस नू कमजोर कर दिया हैं। तो कहंदे ए मूर्ख भी है,

जितेरा शरीर के तेते लगे दुख उतने ही ज्यादा दुख लगे, उतने ही ज्यादा मुश्किल दे विच पै। तो पंजवा नुक्ता यह है कि अगर यह सरोवर ना बनया, अगर इसनु असी दुर्लभ ना बनाया, अगर इसनु रब दी सजाई हुई दुल्हन ना बनाया, तो इसने तुहानु दुखी भी बहुत करना, बहुत दुखी करना है। और उस दुख दे विच कोई साथ नहीं दे सकता, उसनु कोई शेयर नहीं कर सकता, वो दुख तुहानु खुद अपने आप चलना पैना। ए दुख दा घर है। अगला नुक्ता छेवा, गुरु महाराज जी इत्थे छेवें नुक्ते दे विच बहुत ही चोट वाली गल करदे हन। कहिंदे हन ए वेस्ट गया है, निष्फल गया है, व्यर्थ गया है। अते आखदे हन पंक्ति दे विच

सगल शरीर आवत समकान, बाकी सारे ही शरीर जड़े हैं वो मरण तो बाद काम आते हैं। किसी की स्किन काम आती है, किसी दी बोन्स काम आदि हैं, कई दी दवाइयां बनदियां हैं, कई दी स्किन साडे उत्ते पहनने दे योग हुंदी है, असी पहन लैने हाँ। लेकिन इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, मरे हुए इंसान दी स्किन उतार के पहन के देखो, पहनी जा सकती है। कहिंदे सगल शरीर आवत सब काम, सारे शरीर किसी ना किसी काम आ जाते हैं मरण तो बाद। ईवन सप वर्गा जहरीला जानवर भी उसकी स्किन भी कम आती, लेकिन इंसान का शरीर ऐसा है जरा किसी काम नहीं आता। निफल मानुख, ये मानुख का शरीर जरा बिल्कुल निष्फल जाता है। बस एक ही काम इसने करना सी, नाम जपन का, अगर ओ ने किया तो कहने निफल मानुख जपे नहीं नाम, ये बिल्कुल निष्फल हो गया। तो इस दे सारे गुण जो हैं वो गल गए। एक दफा इस पंक्ति में सुनो अते नाले अपने अपने अंदर इसनों रिफ्लैक्ट करो अते सोचो कि ये सच है, ये सही है, कि मैं इस दे नाल सहमत हाँ, कि मेरी जिंदगी ही ते नहीं अजही, कि मेरी ही जिंदगी अजही ते नहीं। यह जो शब्द वर्त्या है त्रिक त्रिक खाया, त्रिक त्रिक सोया, त्रिक त्रिक कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिक शरीर कुटुंब सहत से, किते मेरा खाना पीना ही उसके त्रिकतानी है, त्रिकारतानी है, किते मैं अपनी इस मंदिर वर्गी काया नू ऐसे तो नहीं पचा बैठा हां, तो फिर मैं किस तरह सिर उच्चा उठा के चलांगा, किस तरह अपने आप नू इंसान समझांगा, किस तरह मैं दूसरों के वल उंगली उठावा।

तू मंदिर सी, तू रब दी सुहागण सी, तू सरोवर सी, लेकिन तू अपने सारे गुण गाल ले हैं। महाराज जी वो किमें गले हैं, किड़ियां किड़ियां चीजा ने गाले हैं। सुनो किमें गले हैं, कहते हैं

तो तुमसे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिंदु जा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना तो प्रभु जी पास। सबके चौकीता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

करबहिल तेरा प्रवक्ता, तू जन के है संग, कर कृपा प्रीतम प्रभु अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभु अपने का तान, जन को प्रभु अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी, हा मसलत परवान, चरण शरण हम अनाथ नाथन, अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे, इस दिन आम की पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल साखी।

है दूजी नहीं ठार, जिस पे हम जावेंगे तो तुम ते लेना तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जो तू दे सोई सुख सहना, हर आपे हुए कृपाल आप ही लाएं, जन नानक संदो

हलत पलत प्रभाव सोए कार्य होए सगले पूरे हर नाम जपत सुख सहजे हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होत साधु तुरे आवन जान रे थित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुर नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार।

0: अल्लाह यार योगी।
1: खाहश है तुम्हें तेज चलाते हुए देखें,
0: ये दिहाड़ा थोड़े दिन हो लंघे वडे साहब जाने
1: चमकौर दी।

ओंकार के आकार नाना प्रकार। श्री मुख शब्द गुर सिखन सुनाए हैं, जोग भोग नई वेद जगत भगत जाहे, असन बसन गुर सिखन लिभाए हैं। निगम शेखादिक कथिक नेत नेत कर, पूर्ण ब्रह्म गुरु ज्ञान से।

घट है न बड है न घट बड होता है जमीन जमान के मिखे समस्त एक जोत है न घट है न बड है न घट बड होता है नहन है न बन है समान

अकलंक रूप अपार अनछेज तेज अपार। अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न दोख है।

कहूँ फूल होए के पली राज पूले, कहूँ पवर होए के भली पात पूले, कहूँ फूल होए के भली राज पूले, कहूँ भवर होए के भली पात, कहूँ अश्व होए के बह

निवास खालसे मैं हूं करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूं सद सद संगा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कैयत बिरद, खालसा मेरो पछ अर पाता,

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं

गुरु कलगी दरपातशाह ने बख्शिश की, जेड़ा खाका गुरु नानक ने चितरिया, जिस खाके दे विच गुरु अंगद देव पातशाह ने भी रंग भरिया, गुरु अमरदास पातशाह ने भी सेवा का रंग भरिया, गुरु अर्जन देव पातशाह ने भी शहादत का रंग भरिया, नौ पातशाहियां ने इस खाके दे विच सेवा सिमरन प्यार भावना भर दिती। उस सिखी दे रूप नू गुरु कलगीधर पातशाह ने एक फ्रेम लगा के संपूर्ण कर दिता, सिख का रूप बनाया। प्यार सिखा, तैनू गुरु कलगीधर पातशाह ने सुंदर दस्तार भी बख्शिश की थी, सिखी दी शान बख्शिश की थी, जिथे पंजे कक्के धारण बख्शिश किते, रहनी बहनी विच रहन दी प्रेरणा की, उथे तेनु साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार सजाउन वास्ते भी है गुरु के सिखा। जदो दस्तार सजावेगा, दस्तार सजा के जदो तू शीशे दे सामने खलोता होवेगा, ते मेरे दीदार होवणगे। कितनी बख्शिश की थी, पर अज दा सिख उस मालिक नू भी भुला बैठा, उहदे बचन भुला बैठा। इथों तक दस्तार दी जगह टोपी सिर ते पा बैठा, इथों तक कि उहदे बचन भुला के कन्न विच मुंदरा भी पाई फिरदा, ते फिर कहिंदा कि अज गुरु ने मेरी अरदास नहीं सुनी, गुरु ने मेरे कार्य रास नहीं कीते। ओ सिखा, तू गुरु वाल पिठ कर लवे ते गुरु तेरिया झोलियां भर दे, तू मुख कर गुरु वाल, गुरु का बचन का मन। जदों तू गुरु का बचन मनेगा, गुरु तेरिया झोलियां भर देवेगा, तेरे कोलों कुछ लपो के ना रखेगा, तू गुरु दे बचन मन, गुरु दे पाए पूर्ण ते तुर दस्तार सजा। अफसोस अज का सिख भुलिया फिरदा, रब का राह छड के कुराए राह तुरिया होया। राव भाई, अपने मन नू समझाइए, मना आ मनुखा जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता, ये समा मिले उस गुरु की बख्शिश हासिल कर, रहनी बहनी विच रहो, पंजा कक्कियां दा धारनी बन, सुंदर दस्तार सजा। जे सिख हो के टोपी पाउंदा तां फिर इत्थे बख्शिश, सिख होए सिर टोपी तरै, सात जन्म कुश्ती होए मरे, सात जन्म कोड़ी दा मिलदा जे सिख हो के भी टोपी पावे। सिख दा फर्ज अपने धर्म च रहना, हिंदू है वो अपने धर्म च रहे, गल विच जनेऊ पावे, मुसलमान है अपने धर्म विच रहे, पर सिख दा धर्म पंजा कक्कियां दा धर नहीं बन जाना। ते गुरु दी बख्शी सुंदर दस्तार नू सजावे, सिखी स्वरूप पूर्ण धारण कर लवे। अज दा मुसलमान कहिंदा मैं सिख बन जावा, दास आ थोड़े दिन होए कुवैत की धरती से जदों गए, कुछ दिन कीर्तन किया, एक मुसलमान जिदे हिरदे विच भावना है, प्यार बड़ा, गुरु के दर से आउंदा, सेवा करदा, सिमरन करदा, कीर्तन सुनदा, निता परत नियम है। पर जदों दास वापस आउण लगे ते उस दे नेत्रां विचों जल वहण लग पिया, हाथ जोड़े भाई साहब जी आप जा रहे हो, मेरे वास्ते एक अरदास कर जाओ। मैं उस मुसलमान वीर वल तकिया, ख्याल आया अज का मनुख दुखी है, हो सकता इस नूं भी कोई दुख होवे, इस वास्ते चाहुंदा कि गुरु दे चरणां विच अरदास कर जावे। पुछिया, भलिया की दुख है,
किस वास्ते कहीं अरदास करो। हाथ जोड़े भाई साहब मैनू कोई दुख नहीं है, मेरी एक इच्छा है कि मैं सिख सज जावा। भाई साहब आ तीन बार मैं केस रखे पर मैं सिख ना बन सकिया, मेरे केस कतल कर दिते गए क्योंकि मैं मुसलमान हूं, कवैत की धरती ते रहिंदा। पर इस वास्ते भाई साहब मैं तुहाडे चरणा विच एक अरदास करदा कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे चरणा विच अरदास करो कि आ जन्म तो बाद मेरा अगला जन्म सिखां दे घर होवे ते मैं सिख बन के गुरु कलगीधर पातशाह दा अमृत छके पंजा कक्कियां दा धारनी बन के ते सिख हो जावां। फिर मेरा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। मेरा दिल करता है कि एक बार अमृत छक लव। एक मुसलमान वीर की भावना है सिख बनन दी, अमृत छकन दी। ते आज दा सिख कदे झात मारीए, आज दा सिख नाइयां दी दुकानां ते बैठा है, वो चाहुंदा है कि मैं केस कतल करा लवां, केसां दी विध भी करदा है। अज तकीए मेरियां भैणां भी केसां दी विध भी करदियां। मैं उन्हां भैणां नूं भी बेनती करां, उन्हां वीरां नूं भी बेनती करां, आओ भाई जे तुहानूं सिखां दे घर जन्म मिलिया है ते इस विरसे नूं संभाल लईए, आओ भाई पूर्ण हो जाइए। जदों पूर्ण हो जावांगे दस्तार सजावांगे, गुरु की सिखी जो गुरु ने बख्शी है इसनू गहना मन के हंडावांगे ते फिर गुरु बख्शिश करेगा, झोलियां भर देवेगा। आओ फिर अपने मन नू समझा लईए, ए मंजिल दूर बथेरी जो मिलदी ना हर वेरी। हर वारी ता ए मनुष्या जन्म नहीं प्राप्त होना, तेनू ए दात प्राप्त होइए ते हुण रहितां विच रह, बख्शिश हासिल कर, इस सिखी नू गहना मन के हंडा। आज जिवें बीबियां गहना पाउंदियां किस वास्ते, अपने शरीर नू शिंगार दियां अपने पति नू खुश करन वास्ते। ते आ भाई सिखा तेरा भी पति ओ परमात्मा, तू भी उनू खुश कर, अपने शरीर ते आ गहना पंजा कक्कियां दा धारनी बन, अपने गुरु नू मना लै, अपने गुरु नू खुश कर लै। ये बार बार दात प्राप्त नहीं होनी, ते आ फिर एक बार मन नू समझा।